0: 여기 지나 보냐인 브레키와 넘어질까니 요거 동호이나 사랑의 시지 공부하는 채트를 시시를 놓고 하진 돌대인 린지 재미 채 스디 전강을 아버리신 지금 느낀 뒤 고든 시들에 대해서나 드니 대치는 그렇게 총통 시그 텔레게 절성의 롱타그 종치라고 선수 드니 롱타그 더 고거 치르나 아 이런 게 저우 치르든 막 그 다 시동 아 가진도 뭐 그 나만아 저거 펜슨 저거 그냥 그리즈 냥크르 쳇은 크르게 쳇나 다크다 아 이런 거 링긴 쳇나 롱타게 게니 쳇나 도무라르이 되게 되게 좀 말이 크르게 쳇나 리나 냥크르지 뭐요 그 냥크르지 뭐 거래서 아 가자 동치르게 윤데 송에 쳇나 저거 아마나 그좀 스탠드 좀 줘라 띠누 정그 크르게 영 쳇나 이런 거 간치드 마젤라스 다른 시지 곰반데스 슈크라 쳇나 곰바 신르즈 뜻다즈스 Gomba shinir tukunundu taan reluk chiridna yon reluk chig jaa taan zgisi gunu nang tundiri. Reluk chig jaa pi chiridna gomba tu chitavari tizna chitir chenbu yina jamtsu ra. Jamtsu chenbu yindu khshira chiridna lugui. Balundu gulgunga chiki khshikura yungu ka tijin tida chiridna kashikura kortansi. Torti, shishir lugu paajin torti isi. Gomba ni tora, gomba pibi tuandagari. Dini gomba ni torti isi gunu gena tukunari. O gomba pibi tuandagari. Gomba pi de tengi chiri zina gengabu songzi gita zina langan bari zhong chiri ge chiri zina jiu adukhu jimba chi tengi denba bo zhugu si gu no jigi chiri zina jemi cela abu songzi jemi cei te ngonche chiri zina sinji ge chiri zina jemi cele kage genga rawa ra darstata chiri zina te sida zong kana chi gu nari dino chongu rinchi ge jemi cele resi sida zong jina chi na zong kana resi zong kanga ra resi ओ तंखंगरा वती तिनंगा छिना वछोंगिस न्यांग खजे ने छिना सिजी कोंबा तोरुर सिगुनु के छिना शवारन जिन जे पिजेन रे ते तोरि छला छिना खई कंजो कना छतर शिशिर लु खाजिन जे शो ग ते छिना छोंग अचन मार तो छोंग छे यंगिस छिना शे मेक देना खईजिंग ने ने छिना ने पि खई ती थोमा दान जे शवारन जिन जे पिजेन रे तने निवा छिना सदा ई मा छे देत जो रामा नगे सोर्दुप तें छेर सोंग ता जो गो पोन्या इनो छेर ना खे तो जो ला रामा ना ये सोर्दुप ची तगली ती पोन्यर खे इस गुनो सिकन के न्यार नी नांतन छेर तो जो ना ओ ता करके छेर तो ना जी हान मैं ता करके इस अ नों ता के जों छेर नी छेर तो ना सदा के आ जों कंग रंची के छेर ना जेमी छे ते जों ता सदा छेर ना उठ के डांस उठ के छेर सोंग ता छेर तो ना छे तो हो छेर तो ना जो रामा नगे chū lēngi hēne yīnsi. Chū lēngi hēne uñiga chirizna ta rūn jūsi. Rū sōna chirizna, tī sōna chirizna ta uñiga thārna rīsi. Tī tāng tīla sōkhi chirizna jimtsenda lōrjīnda chirizna shimu yī shēcīsi. Tī shē chōna chirizna, sīdā chirizna kāpzga ndi ndiga shē kūnu gu tāmdi dēnim zinnta tāvī chirizna tukhā chī tāngzisi. Tī tsum chī rūndukta chirizna māchīvārta chirizna ndiga kōyī chī jimāri bātan dō līsi. जो जी हन मान था गिस वन छे छिरिसना क जो रामाना खगे छिरिसना आ ता छु सोवा छिरिसना सदा थि तोना केस छिरिसना इम मछिना था जी इम मछिना नील क छिरिसना सोरदम द छिरिसना तोने ता इ छे ति जियो नरा ओ ति ता वी छिरिसना नगत इला टेने छे सों इस तने ता छिरिसना जो ग सोरदम लंगे ता छिरिसना जमो छिरिसना तन दा जमो तन छे सों सदा ग जो ग सोरदम वे नो छिरिसना हिनी ता छिरिसना ओ जी हन मान था ने ता जो ग ग नो ग पोन्या रे ति जी ता इ छे सों जिस इ छे सों जिरा वन जों छिरिसना अंगन छे छिरिसना संबु ग जो ग मर्गे छिरिसना खतो ख जंबु ग खंग छिरिसना जंथ ग गो ने छिना छों ने रा जो ग ता ख छिरिसना ग जंथ ग छमा ता ता दिर ना जी न मो ग हले ता ख छिरिसना ग संग तो ग छिरिसना रु ग ना दो ग गिस ता ते छिरिसना सेम ते ग द मार्गा ता छिरिसना रे छि छिरिसना मन जो ते छि छि ता सो ना मान दो जी Nini chit na rama na yi sordup jeshtag si gunu ke ya di rangjin jo pari. Di ponir hi si gunu ke chiriz na rangjin jo pi jengi nangi chit na yuande rangjin jo pari.
1: Zaxi den bi nyan kun chokpo namba dayang di chok ghenge derenge lenchen de shtong chim dani chok. Lechen di zomchig ba vandi chotang zomchig gan karwa cerang jahi shtakilwa shiglu shichiw shtakilwa agangchig cerang dang sonim rinchin niyin dadimu.

0: лыка хэмун ыргынахи. Рэнгачи намчинга цойчэнэ не мнага канэ шкача мэшчинна мнага готэк. Рэчара ngatsu msai nayang shkacha te tga nyenkhin zgena thumr shtam tg danzin te yqaz g shachu ta chang kal chiga chik shyashe ko chama alum marunga te tang chebjin te lk khemong de ngatsi argna hisul nang jin je ya chup chung chung cho terang g ना छोंसिपिर गाचकलेनसन दजिलदातंगे यंगछि रंगलियो गर्जिनचुक स्टामखुइन द मोसमाल होजुंगनरे टोपचोंचोंग छमाग इलासाउजुंगजिन नथलथा रेतेलिजिं नामजिंग छोयथनि रंगा फाइललांडोति रंगा फामातंग अरगंबा नामजिं ngni दस्ताबिल हाफशागरन थंगचिचिर दानोग स्टामखुइ मंगाज जोंवाम यंगना रंगा इलाजुंगैदातंगे नामजिंग छोयथनि कोछेजुद दाहाजंग गलछिग
1: Сипа松竹蟹粉，我从各处蟹进去了。中午我们能拍几台炸醋皮，这不能留在亚东娘子里。皮不能特克等，皮不能西中蟹粉，不给了皮了。皮把松竹蟹粉，长满月皮，才是给俺老年鸡蟹头。
0: 야데나 참드니 응초 못하다 되는 거 좋게 드긴저 거 참바 총은 내 시간 내가 법적 총총 알랑초 찌끌랑노가 토르긴가 메톡 쓰르고노 올랭 헤몬데 로뇽 탕치시야